0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबै कनेक्टेड।
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रेसिंग टाइम। यदि तपाईं पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5584954 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज जो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 मेगाहर्ट्ज़।

राम राम सन्जेक 5 बजे थारू भाषक मध्य पश्चिम खबरमा शारिक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। दाङको विभिन्न क्षेत्रहरू जोड्ना रणनीतिक महत्वका साथ पुल निर्माणसँग ग्वारखोला आप विकासको अवरोध नियोकन सहज आवाजातका माध्यम बन्ती गइरहल। यसै गाउँ बस्तीको सम्बन्ध कृषि उत्पादनको बजार विस्तार शिक्षा स्वास्थ्य सहजता लगायतको गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्लक। स्थानीयवासीको काहीबाटिन कोराई तुलसीपुर सड़क खण्डका 4 लेन विस्तारसँग ग्वारखोलामा अरू आधुनिक पुल निर्माण हुइतिरहल बा। दामोदर मार्ग अन्तर्गत घोराईको कुहिरे पानीसे बबई गाउँपालिका साथ बेलासपुर जोर्ना सड़कमा पर्ना तुलसीपुर 15 मलवार ओ तुलसीपुर 12 गरगरुवाहन जोर्ना पुल सञ्चालनमा आशाकल्बा। तुलसीपुर गरगरुवाका हुकुम बस्ने से 2080 सालमा निर्माण शुरू हुलक पुल संचालन आइल पास दक्षिणी दाङको बासिन्दाको जिल्ला सदरमुकाम से पहुँच सहज होल बटवारखल। बबे गाउँपालिका साथमा पुल निर्माण पाछ पश्चिम दाङको सड़क सञ्जाल जिल्ला केन्द्र से प्रभावकारी रूपमा जोर घिल्बा। यसै वर्षौं से आवत जावतको समस्या हटाकन स्थानीय जनजीवन सहज बनिलक हो। यसै पुरानो मानपुर बजारहन तुलसीपुर से जोर्ना ग्वारखोलामा बनलक पुल से स्थानीय आर्थिक गतिविधि समेत टेवा पुगिलक। तुलसीपुर 16 साईपुरको अर्जुन रेग्मी से बटुवा रखल। ग्वारखोलामा थप पूर्वाधार विस्तारको क्रम जारी बा। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 19 बिजौरी सिरीचौरी हुती रोल्पाको रुन्टीगढ़ी होलेरी धवन ओ सल्यान जोर्ना सड़क अन्तर्गत रानीवास क्षेत्रमा औरो पुल निर्माणको लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि भर्स्याकल्बा। लुम्बिनी प्रदेश सरकार से प्रदेश का सक्कू सरकारी सेवा तथा सूचना एक स्थान से उपलब्ध करीना उद्देश्य से एकीकृत प्रदेश पोर्टल कार्यान्वयन में अन्ना हो रहल। यही से नागरिक से मंत्रालय व निकाय अनुसार छुट्टा छुट्टा वेबसाइट ख्वाजा पर्ना झंझट हटना व एक स्थान से आवश्यक सेवा तथा सूचना प्राप्त कर सकने बाट मुख्यमंत्री चेतनारायण आचार्य के अध्यक्षता में बसले सूचना तथा संचार प्रविधि परिषद का बैठक में प्रदेश सरकार का सूचना तथा सेवा प्रणाली प्रविधि मैत्री सुरक्षित पारदर्शी ओ नागरिक मैत्री बनिना विषयमा विस्तृत छलफल तथा प्रस्तुतिकरण करगिलक हो। बैठकमा चालू आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकास तथा स्तरोन्नति कलाको विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्जिन जानकारी दिगिल्बा। प्रदेश सरकारले एकद्वार प्रदेश पोर्टल सञ्चालनमा अन्ना हुलक हो। उक्त पोर्टल मार्फत प्रदेश सरकारका सक्कु मन्त्रालय तथा निकायका सेवा सूचना तथा डिजिटल सेवामा एकै स्थानसे पहुँच स्थापित हुने बा। उसँग एकीकृत सूचना पोर्टल रिडिजाइन तथा अपग्रेड गर्जिन भएसको कीबोर्ड मार्फत सूचना ख्वाजा सेक्जिना सुविधा विकास गर्जिने वाकलसे गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली हन समेत थप प्रभावकारी बनाजिना जनागिल्बा। यसै प्रदेश सरकारका सक्कु सूचना एआई प्रविधि मार्फत भोइस ओ कीबोर्ड मार्फत खरिद ओ सेवा सम्बन्धी कार्य एकै स्थानसे प्राप्त कर सेक्जिना जनागिल्बा। प्रदेश सरकारको वेबसाइटका फ्रेमवर्क स्तरोन्नति कर्जिना यी क्रममा वेबसाइट हन अपाङ्गता मैत्री बनाजिना प्रणालीमा रलक प्राविधिक कमजोरी हटिना ओ साइबर अपराध ओ अनाधिकृत पहुँचे सरकारी सूचना प्रणाली हन सुरक्षित बनाजिना योजना रहलबा। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले रूकुम पश्चिमका 8 बिस्कुट नगरपालिकाका मेयर सहित 11 जना विरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरी राखल। दुग्ध सहकारी संस्थान कार्यविधि विपरीत करोड़ रूपियाँ अनुदान उपलब्ध कराकन राज्य हन गैर कानूनी हानि पुगिलक आरोपमा मुद्दा दायर गर्लक आयोग कहिबाटिन। आयोग अनुसार 8 बिस्कुट नगरपालिका 9 जनक बटालासे दुग्ध सहकारीको नाममा जोर डेयरी सञ्चालन गर्न कति नगरपालिकासे लाखौं रूपियाँ अनुदान प्राप्त गर्लसे फे 2 वर्षसम्म डेयरी सञ्चालन निकर्गल पागिल्बा। सहकारीको नाउँमा प्राप्त सरकारी गाड़ी व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्न कना उजुरी पाछ आयोगले अनुसन्धान शुरू गरल रह। अनुसन्धानको क्रममा आर्थिक वर्ष 2076-77 पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय रूकुम पश्चिम मार्फत सञ्चालित दुग्ध व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रममा गम्भीर अनियमितता हुलक आयोगको निष्कर्ष बा। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको दुग्ध व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2076 विपरीत प्रस्तावको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन निकैकन बदनियतपूर्वक अनुदान वितरण गरिगिलक आयोग जना राखल। 8 बिस्कुट दुग्ध सहकारी संस्थासे सम्झौता कैकन सिस्यान केन्द्र निर्माणको लागि 91,17,873 रूपियाँ अनुदान उपलब्ध गराइल रह। उसँग सिस्यान केन्द्र स्थापना हुलक 2 वर्षसम्म फे सञ्चालनमा नियैलक जानकारी हुइटिहुइटि फे 8 बिस्कुट नगरपालिकासे उहो सहकारी हन
थप 80,23,051 रूपियां बराबर का एक मिल्क टैंकर और दुठो सिंगल बैब गाड़ी अनुदान में उपलब्ध करागिल आयकार बाटिन। ऊ गाड़ी समेत प्रयोग विहीन अवस्था में रलक नेपाल सरकार कर्णाली प्रदेश सरकार तथा नगरपालिका का अनुदान को दुरूपयोग हुईलक आयोग को जना राखल। ओ नेपाल शिक्षक महासंघ से सरकार से विगत में हुईलक सहमति कार्यान्वयन ओ विद्यालय शिक्षा में सुधार कला जोर देती फेर आंदोलन कर लग्ना निर्णय कराखल। काठमाडौं में साउन 16 ओ 17 गते सम्पन्न महासंघ का 73 राष्ट्रीय परिषद का निर्णय सार्वजनिक र आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन में महासंघ का अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी कर पर्ना शिक्षा में लगानी बढ़ाई पर्ना ओ विद्यालय में हुना राजनैतिक हस्तक्षेप अंत्य कर पर्ना मुख्य माग अघारी सार्लक बटुआ रखल। उसका आर्थिक वर्ष 2083-84 का बजेट में प्रारंभिक बाल कक्षा का शिक्षक विद्यालय कर्मचारी और सिकाई अनुदान का शिक्षक कनकला तलब वृद्धि प्रोत्साहन भत्ता व महंगी भत्ता उपलब्ध निकरीलक विभेद करलक अध्यक्ष व सचिव द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख बा महासंघ से ऊ शिक्षक कर्मचारी हनफे अन्य सरह सुविधा दिह कनक स्थायी दरबंदी सिर्जना कर माग कई राखल। हुईठा ताजु थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह काल संज्याफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सकने बाटी अखसक खबर मसे समाचार कक्षक सक्कू संगरेन संग मैं शालिक राम चौधरी विदाही टूरी मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।

0: वायरनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर फ्री इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायरनेट अब सब कनेक्टेड।
1: हाड जोड्नी क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे सूचना।
2: हाड जोड्नी नसा तथा मेरुदण्ड रोग विशेषज्ञ तथा छाला मासु एवं हड्डी क्यान्सर सर्जन डाक्टर गोपाल पौडेल एमबीबीएस एनजी एमसी कोहलपुर एमएस बीएस एमएमयू ढाका
1: डाक्टर द्वारा दिइने सेवाहरू।
2: छाला तथा मांसपेशी सम्बन्धी क्यान्सर भएको,
1: हाड जोड्नी सम्बन्धी क्यान्सर भएको,
2: हात खुट्टा भाँचिएको प्लास्टर गर्नुपर्ने,
1: शरीर झमझमाउने, दुख्ने, सुन्निने, गाँठागुटी सिल्किने,
2: बाथ युरिक एसिड हड्डी खिएको,
1: ढाड कम्मर घुँडा तथा जोड्नी दुख्ने,
2: खेलाडीहरूको चोट तथा जोड्नी सम्बन्धी समस्या।
1: नोट, फोनबाट पनि नाम दर्ता गराउन सकिनेछ।
3: सम्पर्क दिव्य फार्मेसी घुराई 15 सडक विभाग रोड दाङ। फोन नम्बर 0825940010, मोबाइल नम्बर 98478893 र 98095012871।

0: कोकोनट शोकोनट भिटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: जिल्ला नबी थुप्नु चार मेगा हर्ज मा तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्यपश्चिम।
1: ओखती साबुन को अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल लामो अनुसंधान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाकबन्द जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जडीबुटी को शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल मात्र रु 50 मा।
2: कुराही को लागि आधिकारिक विक्रेता भुसाल स्टोर हस्पिटल रोड कुराही दान फोन नम्बर 082-585-210 थप सम्पर्कका लागि हिमालय स्टोर बाल मन्दिर अगाडि निरज स्टोर सब्जी मंडी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसंचार देखि पश्चिम तर्फ।
3: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छानामुनि।
4: वरिष्ठ हार्ट जोड्ने तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली घोराहीमा।
5: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू:
4: हात खुट्टा भाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हार्ट जोड्ने सम्बन्धी अपरेशन सेवा।
6: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा,
7: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
8: नशा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्मा द्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
6: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारी द्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
8: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसी द्वारा बिरामी को चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
6: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्य द्वारा भिडियो एक्सरे सेवा, साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
3: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली, सडक विभाग ओह्रालो, घोराई जाँच, फोन नम्बर 082-585-218।

आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज ही आवाज हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 मेगाहर्ट्ज़।